0: अरे कमे, अरे अरे मर सुन को कमे, सू सू में पागी आनी में, केत केत, ते का बेन्यो पागी, केत केत, अरे कमे, बाह सू सू में का मायो भी हो पागी और ना मर सुन को कमे यो भी
1: Siente la magia de nuestras islas en cada nota. Esto es Canarias en Canto, tu cita diaria con la música que nos define.